0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 6 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే నవీన్ సక్సేనా. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है. घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है. एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा. दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा. आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है. श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं. फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं. और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े. इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी.
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे. वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षण

आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसी

0: की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
6: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
7: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और

0: सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे, ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी, एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना

श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं जरा सोचिए, सेहत की नींव आखिर कहाँ से शुरू होती है? किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि हमारी थाली से, है ना? हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और आज है उसका आखिरी दिन 7 सितंबर, जिसका मकसद है लोगों को संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना। क्योंकि सही पोषण सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि बच्चों के विकास, अच्छी प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद भी तैयार करता है। घर की रसोई से लेकर स्कूल, आंगनवाड़ी और समुदाय तक संतुलित थाली, स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियों और सही खानपान की आदतों की बात पहुंचाने का ये दिन है। और क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, हर दिन की थाली में किए गए एक छोटे से सही चुनाव से होती है। तो श्रोताओं, आज हमारा कार्यक्रम पिटारा सेहतनामा ये इसी पर केंद्रित है, पोषण विषय पर। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा, तो आप इसे सुनना ना भूलिएगा। तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का है और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत कलयुग फिल्म का। अलीशा चिनॉय की आवाज में सईद कादरी का लिखा गीत, अनु मलिक का संगीत।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं आपको बता दें कि आज है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस। जी हाँ, यानी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन। आसान भाषा में समझें तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद DMD जीन में बदलाव के कारण होती है। इसमें शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का एक जरूरी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। बचपन में चलने फिरने में देरी, बार बार गिरना या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। यानी आज का दिन यही संदेश देता है, सही जानकारी सही समय पर पहचान ली जाए और संवेदनशील सहयोग ड्यूशेन से प्रभावित परिवारों के लिए और बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। और जागरूकता का सबसे खूबसूरत तरीका

का यही है कि समाज मिलकर ड्यूशेन से जूझ रहे हर बच्चे और उसके परिवार के साथ सहयोग और संवेदना की एक मजबूत कड़ी बने, क्योंकि कभी कभी साथ का एक छोटा सा कदम भी किसी के सफर को थोड़ा आसान बना सकता है।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे सितारे जमीन पर, इस फिल्म से सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्य कुमार की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत। और इसी के साथ अभी वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम निर्देशक पीएल संतोषी पर केंद्रित रहेगा, जो कि आप सुन सकते हैं 9:30 पर सुबह और पुनः रात 9:30 पर। आलेख एवं स्वर जी श्याम का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कृष फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुणाल गांजा वाला की आवाज में। विजय अकेले का लिखा गीत और राजेश रोशन का संगीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदनान सामी का गाया ये गीत फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से। समीर का लिखा गीत है, अदनान सामी का कंपोज किया।

हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और असिस कौर, साथ ही विनित सिंह की आवाजों में बैड बॉय फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न हो रहा है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नजर।
1: हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी

के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरी जान संडे के संडे।
1: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी, और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत, पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
2: वो हमसे

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोषी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी चार गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का, आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगतराम का है।

सन 1950 की फिल्म सरगम को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया 1952 की शिनशिना की बुबला बू, 1952 की छमछमा छम, शिनशिना की बुबला बू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

एल संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

1957 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

अब जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। ये फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में ये एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता का, आइए सुनते हैं।

एल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन की चिड़िया, रिक्शावाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसिकी प्रदान की।

टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

पीएल संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी, बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की ही घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर हमने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और हम आ गए हैं आज बहुत सारे विषय लेकर, कुछ व्यंजन लेकर और कथा सुधा लेकर।
1: बिल्कुल, वैसे हम ले तो आए हैं लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि कोई भी मंजिल पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, सफलता तक पहुँचने के लिए संघर्ष बड़ा जरूरी होता है और संघर्ष की कहानी बहुत मायने रखती है। यूं ही कोई प्राप्य नहीं होता है।
2: बिल्कुल, मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन वो मेहनत भी कहते हैं ना कि संघर्ष उसमें बहुत है। मेहनत अलग चीज हुई, संघर्ष अलग है। और हर इंसान मेहनत तो करता ही है, चाहे वो छोटी से छोटा श्रम हो, परिश्रम हो, लेकिन कुछ लोग जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो कई सारे संघर्षों से होकर ही वो गुजरना पड़ता है। और जब भी हम बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं ना तो पता लगता है कि कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा।
1: और संघर्ष जो कहा जाता है कि सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है, तो जितना आप संघर्ष कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आपको आगे चलकर जीवन यापन करना होगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। अब हमारे श्रोता क्या कहते हैं इस बारे में, अपने संघर्ष की कहानी वो हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कैसे उन्हें सफलता मिली, और उन्हें ही नहीं उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनके परिजन मित्रों को।
2: और वो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या किसी की सफलता ने उनको प्रेरित किया, उनके संघर्ष की कहानी ने उनको बहुत सारी प्रेरणा दी जिसको सुनकर वो अपने जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे उबर कर आगे बढ़ पाए।
1: अच्छा, एक बात बताइए चंचल जी कि पिछले दिनों आपने आसमान तले कब आप यूं ही खड़ी रही और आसमान, नीला आसमान कब देखा? वो धुंधला वाला नहीं, नीला नीला आसमान जो कहा जाता आसमानी रंग, वैसा आसमान देखा?
2: आसमान का आसमानी रंग ना आजकल बहुत सारा जो प्रदूषण है उसके आगे कहीं धुंधल का सा छा गया है, वो दिखाई ही नहीं देता। और कई बार जब हम छत पर सोया करते थे तारों की छांव में, वो तारों की छांव भी खासतौर पर

0: महानगरों में ना तारे नजर ही नहीं आते हैं। अगर नजर आएंगे भी ना तो रात के 1-2-2.5 बजे के बाद में, जब थोड़ा सा पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है ना, तब आपको कहीं थोड़ा सा आसमान साफ नजर आता है।
1: महानगरों से अगर हम किसी गांव की ओर जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि आसमान बिल्कुल सामने नीचे उतर आया है और तारे झिलमिल झिलमिल तारे एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। और महानगरों में आप पूरी अपने मुंडे को ऊपर कर दें तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तारे छुपे रहते हैं। तो स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, 7 सितंबर को इसे खासतौर से याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और आज वायु प्रदूषण के कारण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या और बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था और विकास को भी चुनौती मिल रही है।
1: तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज अपने प्रोग्राम के दौरान, और कुछ व्यंजन की बातें भी तो होंगी।
0: बिल्कुल, आज से हम शुरू कर रहे हैं, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, और कश्मीर के जो व्यंजन है इनकी बात होगी तो दमालू भाई पंजाबी भी होते हैं लेकिन दमालू कश्मीरी भी होते हैं, तो कश्मीरी दमालू की रेसिपी की आज बात की जाएगी।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और अब क्या एक गाना सुन लिया जाए?
0: पहले गीत सुन लेते हैं।

0: न ये आसमां था न ये जमी थी, भाई आसमान की तलाश कौन नहीं करता है,
1: बिल्कुल ये
0: की
1: उन दिनों की बात
0: हो गई
1: ना जब प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं था, तब ऐसी जमीन और आसमान नहीं थे, और अब ये जमीन आसमान हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है। हालांकि स्वच्छ हवा

0: हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 99% जनसंख्या ऐसी है जो ऐसी ही तरह की हवा में सांस ले रही है जहां बहुत सारा प्रदूषण है, और इस नुकसान से खुद को और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को कुछ बातें समझनी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि वायु को शुद्धता रखने के लिए जो है हम कचरा जलाना बंद करें, विद्युत कचरे का निस्तारण करें, सप्ताह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ईवी को अपनाएं और सह वाहन यात्रा को अपनाएं कि अगर हमारे उसी रास्ते से कोई जा रहा है तो हम उसको साथ में ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एयर की क्वालिटी इंडेक्स को देखने की आदत भी बनाएं।
1: चंचल जी, जो सूक्ष्म धूल कण होते हैं हमारे फेफड़ों से सीधे रक्त में चले जाते हैं, इससे केवल श्वास रोग ही नहीं होता है बल्कि हृदय रोग होता है, मानसिक अवसाद भी बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो धरातल के निकट ओजोन परत अधिक बनती है, लू और स्थिर वायु की स्थिति में प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं जिससे हवा और ज्यादा विषैली हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए 7 सितंबर को स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। पहली बार ये दिवस 2020 में मनाया गया था, ये इस बार 7वां वर्ष है
0: और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है वो है क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना जरूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दो अलग चुनौतियां नहीं बल्कि दोनों का एक ही मतलब है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, पराली जलाना, ये हमारे हवा को भी खराब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देते हैं।
1: जबकि हवा हम सबके लिए जरूरी है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम याद रखें कि स्वच्छ वायु विलासिता नहीं है बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है, और स्वच्छ वायु और नीला आकाश तभी होगा जब स्वस्थ विकास होगा। और हम सब की निजी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं, कम से कम इर्द गिर्द पौधारोपण तो कर सकते हैं, पौधे लगाएं तो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आपको मिल सकती है। फिलहाल कथा सुधा सुनते हैं।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के।
4: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहां रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हांकते पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारद लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारे।

0: मजेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियां राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का बताना था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशलक्षेम पूछते थे और मियां राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियां राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियां राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियां राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर मियां राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियां राहत अपने नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियां भागो नहीं तो जान गई। मियां राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत को लग ही तो गया और राहत लाहौल विला कुबत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियां राहत को उठाया, चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियां राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियां राहत से पूछा,
1: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
0: मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
2: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
0: युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा।
1: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
0: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
2: मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
0: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले,
2: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए।

0: ये, और आप चालान करने की बात करते हैं।
1: इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये दो पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहां प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें दबदबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
0: बाबू साहब, उफ, बाबू साहब।
1: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
0: नहीं।
1: मियां राहत ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
0: हाँ।
1: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, कुछ बदलाते क्यों नहीं, कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
0: बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है ना? जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
1: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ?
0: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
1: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, उनका नाम सुशीला देवी है ना?
0: है बाबू साहब, यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
1: अरे तो फिर इससे क्या?
0: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
1: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
0: बाबू साहब, ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
1: मैंने कहा, मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
0: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह, इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूँ।
1: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियां तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
0: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
1: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो

0: होकर कह रही थी।
1: अरे निगोड़ा निगोड़ा, कलुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे। ले नौकरी छोड़ने का मजा ले, ले मजा ले।
0: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
2: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय ये इश्क।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं ये।

0: सिखियां और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है, तो लेते हैं।
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली
1: और गीत। ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशीय दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
0: बिल्कुल। और चंचल जी आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध हैं, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं और इसीलिए पुलिस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग जरूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी हैं। इस वर्ष का विषय हमें एक गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
0: सही बात है और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं ये।

0: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना, कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दोराय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है, और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है, और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
0: बिल्कुल इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कह रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है, और इन सब चीजों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग है उसको सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।

इसी तरह से एक संदेश हमें ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह

0: शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते
1: जब
0: हैं।
1: लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना,
0: हाँ,
1: तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानो प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार बार बार लिखना। तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाइयां आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
0: ये बात आपने बड़ी सही बताई। कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर मंजिल भी है।
1: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं। बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
0: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा। और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
1: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूं उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं दिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं, हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन के बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने, छोटे छोटे आकार के। सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए। ताजा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है। सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है। सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी, वो एक बड़ा चम्मच लेना है। दो चुटकी हमें हींग लेनी है। और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सके। और इन आलू, जो छोटे छोटे आलू हैं, इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है। और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे, थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है। उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है। फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है। फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं, थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो है वो तैयार हैं।
0: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हमने पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन, जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखते हैं वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी जरूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है, तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी जरूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको जरूरी है, आपको आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको जरूरी है, और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझे ये जो जरूरत होती है, एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कितनी डाइट की जरूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो।
2: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है।

0: सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
0: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
1: वो भी मौसम के हिसाब से।
0: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है। और हम आजकल ज्यादातर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध, पनीर, इसमें से आ जाता है। और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी, फिश, चिकन, इसमें से आपको मिल जाता है। और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या है, उस पे ये निर्भर करता है
1: जी। और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ,
0: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: जारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
2: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि

0: बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए?
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत जरूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा, ओके।
1: आप ज्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटी छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है, इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
0: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
1: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं।
0: जी,
1: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल, जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे

0: अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा, मगर मौसम के आधार पे जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में हम उसको जो
1: पत्ती वो वाली सब्जी,
0: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादातर पता नहीं होती है ऐसी वाली बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
1: अच्छा,
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पर खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। नट्स और ड्राई फ्रूट्स ये दो चीजें अलग अलग है।
1: जी, जी।
0: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं।
1: जी।
0: नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गए। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है, वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
1: जी जी।
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है, जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी। उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गांव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहां पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपकी सही विटामिन्स मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना है, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहां पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा लें, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं, जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से

0: एज ग्रुप में आप खेल रहे हो इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए। जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है और उनको खेलकूद में भी सही रहना। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
1: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
0: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है, मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है, प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है, आप ज्यादा करोगे तब आपके परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को आईबीएस आईबीडी ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट। और वो चाय भी है आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है
0: जी।
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
0: जी, ब्लोटिंग होने लगती
1: बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है। तो आपकी शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
0: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है आईबीएस, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, आईबीएस, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाए, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: आईबीएस और आईबीडी थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहां पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है, आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहां यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम से कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले।

0: हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो, इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहां पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितनी विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहां काम करते हो ना, वहां आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई, मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई, खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। चॉकलेट लाइन।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी।
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपकी थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे। आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी जी।
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गर्म मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं इस्तेमाल करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते, थोड़ा सपोर्ट कर सकते।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर, लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा, तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
0: जी जी।
1: इसके लिए हम कहते हैं

0: कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
1: जी बिल्कुल।
0: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहां बाहर की खेलकूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहां हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना जरूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने।
0: जी,
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए, मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती है, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहां से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूं तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से, तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला कर लें,
0: अमरूद,
1: तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आंवला एक चीज है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया।
0: करौंदा,
1: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व तो किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाएं, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
0: जी जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में नींबू के साथ भी, या

0: और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक या काला नमक, सेंधा नमक और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
0: ज्यादा
1: थाली में ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की जरूरत है।
0: जी, जी।
1: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
0: दाल में भी बिल्कुल।
1: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
0: जी, बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में एस मल्ला रेड्डी की याद में मुनक़िदा ताज़ियती तकरीब में शिरकत करते हुए आनजहानी किसान लीडर को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आला ने मल्ला रेड्डी को किसानों के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया करार देते हुए कहा कि इनकी तहरीरों से रहनुमाई हासिल करते हुए ज़राई मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि काबिना से मुशावरत के बाद मल्ला रेड्डी की याद को हमेशा जिंदा रखने के इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने गरीब आवाम के मुफाद में कम्युनिस्ट तहरीक और कांग्रेस की पॉलिसियों के दरमियान हम आहंगी का जिक्र करते हुए कम्युनिस्ट जमातों से अपील की कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुत्तहिद हों। उन्होंने बीजेपी पर वोटरों को हक रायदही से महरूम करने की साजिश का भी इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना की मुसल्ला जद्दोजहद के रहनुमा और नलगुंडा के पहले रुकन पार्लियामेंट कामरेड रवि नारायण रेड्डी की बरसी के मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवराव और एमएलसी एन सत्या ने मखदूम भवन में उन्हें फूल पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। सांबा शिवराव ने निजाम मुखालिफ जद्दोजहद में रवि नारायण रेड्डी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पहले लोकसभा इंतखाबात में रवि नारायण रेड्डी ने जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो रवि नारायण रेड्डी के नजरियात से तहरीक हासिल करते हुए अवामी तहरीकों के लिए जद्दोजहद करें। ये आकाशवाणी हैदराबाद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दो टीमों ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के क्याम के इम्कान का जायजा लेने के लिए फील्ड इंस्पेक्शन किया। खम्मम के रुकने पार्लियामेंट आर रघु राम रेड्डी और कोत्तागुड़म के मेयर एम गणेश की क्यादत में हुकाम ने सीतमपेट और सुजाता नगर में जमीन की दस्तियाबी और तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। दो रोजा मुतालियाती अमल के दौरान चार मुकाम का मुआयना किया गया, जिसके बाद मौजूद तरीन मुकाम का इंतखाब किया जाएगा। तेलंगाना महकमे तालीम की सेक्रेटरी और जिले इंतखाबी फहरिस्त ऑब्जर्वर योगिता राणा ने मंचरियाल के अहदेदारों को एसआईआर 2026 के अमल को मुकम्मल शफाफ और मौसर अंदाज में अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने जिला कलेक्टर कुमार दीपक के हमरा अमल की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर बताया कि 1,70,000 तैयार करदा नोटिस में से 1,10,000 नोटिस हैं ऐसे वोटर्स को तकसीम किए जा चुके हैं जिनके नाम फहरिस्त में नहीं थे या जिनके इंदराज में बेकायदगियाँ पाई गई। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि ज़रूरी दस्तावेजात जमा करने के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करें। साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर अपने वादे पूरे ना करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इख्तदार में आए तकरीबन 1,000 दिन मुकम्मल हुए, जबकि इख्तदार संभालने के 100 दिन के अंदर वादे पूरे करने का ऐलान किया गया था। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बीआरएस कायदीन के हमरा मेदक कलेक्ट्रेट तक ऑटो और मोटरसाइकिल रैली की क़यादत की और एक याददाश्त पेश की। और अब आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना कानून साज असम्बली का मानसून इजलास बीजेपी अरकान की हंगामा खैज एहतजाज के दरमियान शुरू हुआ। बीजेपी अरकान ने 22A ममनू अराजी के मामले पर फौरी बहस का मुतालबा किया। फी रीइंबर्समेंट फंड्स की इजराई में ताखिर के खिलाफ तेलंगाना असम्बली के करीब एहतजाज के दौरान बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव समेत कई कायदीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। गन पार्क में सिया टी शर्ट एहतजाज के दौरान पुलिस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान हाथापाई में बीआरएस के अहम कायदीन केटी रामाराव और हरीश राव जख्मी हो गए। असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार जज्बाती हो गए और इनकी आंखों में आंसू आ गए जब वजीर सीतक्का ने स्पीकर की मरहूम वालिदा के खिलाफ तौहीननामे जमाज किया। ये आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति

0: को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: మస్తే మజా మీరింతవరకు విన్నారు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోలో. సమయం 8:30.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान. पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितम्बर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
0: आकाशवाणी विविध भारत केंद्रम स्टूडियो क्लॉक लो समय 8:30. ఏకచిత్ర గీతాలు నేటి ఏకచిత్ర గీతాల్లో శంకర్ దాదా MBBS చిత్రం నుండి పాటల్ని వింటారు. సంగీతం దేవిశ్రీ ప్రసాద్.

0: 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद से मुल्क ब्रह्मोस मिसाइल की सलाहियत बढ़ाने में कामयाब रहा और ये वजीर आजम की सरगर्म सिफारतकारी और उनकी नजरिया साज क्यादत का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के मौसर होने की सलाहियत सामने आ चुकी है।
1: भारत 2016 से पहले एमटीसीआर मेंबर नहीं था, जिसके कारण हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज एक सीमा से आगे चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सक्रिय डिप्लोमेसी और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हमारा एमटीसीआर के हम सदस्य बने और उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ाने का काम करने में हमने कामयाबी हासिल की है। और आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वजीर आजम गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 3 अहम सेक्शनों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर का अहाता करते हैं। आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामानिगारों को जानकारी देते हुए रेलवे के वर्कजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि बारबर्दारी के लिए मखसूस मशरकी और मगरबी कॉरिडोर मुल्क के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे के लिए एक अहम वसीले के तौर पर काम करेंगे।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर तकरीब से खिताब करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरवकार सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसों में से एक GFF 2026 का मौजू है सलाहियत से असर पजीरी तक। इस बारे में जारी की गई सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक GFF 2026 का मकसद डिजिटल अदायगियों और मालियाती शमूलियत में भारत की क्यादत को परवान चढ़ाना और सलाहियत से असर पजीरी तक ले जाना है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज गोवा के पनजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अब मगरबी खित्ते की रियासतों के माबैन किसी तरह का कोई तनाजा नहीं रह गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जोनल काउंसिलें तनाजात के तस्फीये के फोरम से आगे बढ़कर अब अवामी बहबूद की स्कीमों पर अमल दरामद की निगरानी के प्लेटफॉर्म बन गई हैं। जनाब अमित शाह ने कहा कि आज की मीटिंग में जिन मामलों पर तबादला ख्याल किया गया वो सभी निगरानी से मुताल्लिक थे। उन्होंने कहा कि जोनल काउंसिल में दरियाओं के मामले पर रियासतों के दरमियान कई तनाज़ात भी हल कर लिए गए हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने आज गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब के दौरान गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुरवकार पुलिस परचम पेश किया। जनाब अमित शाह ने शहरियों और सयाहों को फौरी इमदाद फराहम करने की खातिर 12 जबानों में साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 के लिए AI पर मबनी वॉइस असिस्टेंट का भी आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने गोवा पुलिस की खिदमात, पेशा वाराना सलाहियत, दिलेरी और डिसिप्लिन के लिए उसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि फोर्स ने दाखिली सलामती बरकरार रखने, साहली इलाकों के तहफ्फुज और गोवा की सियाहत और मईशत को महफूज रखने में अहम रोल अदा किया है।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने आज कहा कि मरकज ने सभी तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो LPG रिफिलिंग बुकिंग के लिए 25 दिनों के नजरसानी शुदा वक्फे को शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसां तौर पर फौरी नाफिज करें। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोपी ने कहा कि LPG सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और रिफिल बैकलॉग में नुमाया कमी आई है। वहीं मरकज ने इस बारे में आयद पाबंदी में नरमी की है। उन्होंने कहा कि शहरी और देही जुमरे से कत नज़र अब सभी घरेलू LPG सारिफिन 25 दिन के वक्फे के बाद ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। مشرق وسطی

में जंग की वजह से एलपीजी सप्लाई पर दबाव के सबब शहरी इलाकों में रीफिल बुकिंग का वक्फा 25 दिन और देही इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की वज़ीराला रेखा गुप्ता ने कहा है कि कल दिल्ली के सत्यनिकेतन में गिरी इमारत के मुबैना मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीराला ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर समेत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के 5 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीराला ने कहा कि पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को फौरी तौर पर सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान दिल्ली की सत्यनिकेतन इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी फोर्स एनडीआरएफ की जानिब से जाए हादसे पर तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने इत्तला दी है कि मजमुई तौर पर 12 मुतासरीन को अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी थी, जबकि एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर बाद में चल बसा। एम्स ने मजीद कहा कि बचाए गए 3 अफराद की हालत नाजुक है, जबकि 2 लोगों की हालत मुस्तहकम है। वहीं एक शख्स को डिस्चार्ज दे दिया गया है। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी को हिदायत दी है कि कौमी राजधानी में सत्य निकेतन के मकाम पर एक इमारत के ढह जाने के वाकये की आला तरीन एग्जीक्यूटिव सतह पर इंक्वायरी कराई जाए और इस बात की भी जांच की जाए कि आया ये इमारत तामीर के लिए मंजूरी ली गई थी या नहीं। इस वाकये का संगीन नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी को यह हिदायत भी दी कि वह अपने दायरे इख्तियार के तहत आने वाली सभी पेइंग गेस्ट इमारतों और हॉस्टल्स का एक हफ्ते के अंदर अंदर जामे ऑडिट कराए। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि इमारत गिरने के वाकये की इंक्वायरी में इस बात की खास तौर पर जांच की जानी चाहिए कि आया हर तरह की मतलूबा इजाजत हासिल कर ली गई थी या नहीं, किसी तरह की गफलत या नाकामी के लिए जिम्मेदार एहलकारों की निशानदेही की जाए और कसूरवार पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ मुजवजा या अब तक की गई कार्रवाई की तफसील पेश की जाए। इंतखाबी कमीशन ने आसाम की नागांव लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की 2-2 असेंबली सीटों और पुडुचेरी की 1 सीट के लिए जिमनी असेंबली इंतखाब का भी ऐलान किया है। कमीशन ने कहा कि तमिलनाडु की मदुरन तकम और धर्मपुरम सीटों, मगरबी बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम और पुडुचेरी की थत्ता चंदावड़ी असेंबली सीटों पर जिमनी इंतखाबात होंगे। लोकसभा और असेंबली जिमनी इंतखाबात दोनों के लिए नोटिफिकेशन बुध के रोज जारी किया जाएगा। 16 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। राय दही 6 अक्टूबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती अगले महीने की 9 तारीख को होगी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इन इत्तलात को गलत करार दिया है कि इसरो की निजकारी की जा रही है। आज बेंगलुरु में सीआईआई के जेर एहतमाम एक नुमाइश के मौके पर नामा निगारों से बात करते हुए इसरो के सरबराह ने कहा कि इसरो एक सरकारी इदारा है और इसे प्राइवेट हाथों में देने का सवाल ही नहीं है। अलबत्त उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जानिब से दी गई मंजूरी और खला से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर खला के प्रोग्राम में शामिल है, जिसका मकसद इसकी सरगर्मियों में तेजी लाना है। इसरो के महदूद रोल और बजट से मुतालिक इल्जाम पर चेयरमैन मौसूफ ने यह वाजे कर दिया कि इसरो का रोल कई गुना बढ़ गया है और इसकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तस की गई रकूमात काफी हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। कई मकामात पर गंगा और दीगर बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे रियासत के वसी इलाके मुतासर हुए हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। 13 जिलों के 77 ब्लॉकों में 438 पंचायतों के दायरे में आने वाले लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शुमाल मशरक हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। इस दौरान अंडमान और निकोबार जजायर, बिहार, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला और माहे में कल मौसम के गर्म और मरतूब रहने की भी पेशगोई की है। पैरा तीरंदाजी की मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी ने आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे मरहले के तीसरे दिन खवातीन के कंपाउंड इनफरादी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए तमगा यकीनी बना

0: लिया है। ऑल इंडिया सेमीफाइनल में बाजुओं से महरूम जम्मू की शीतल देवी ने सरिता को 143 के मुकाबले 145 से शिकस्त दी और सोने के तमगे के लिए होने वाले फाइनल मुकाबले में पहुंच गईं। फाइनल में शीतल देवी का मुकाबला कजाकिस्तान की आइजादा सैदान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुताल्लिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मुकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिलें तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। एलपीजी का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाकये में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आला सतह की एमसीडी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों नीज पुडुचेरी में 1 सीट का जिमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। और आज का हमारा विषय है लोक अदालत, यानी जनता की अदालत। हम सब जानते हैं कि हमारी सामान्य अदालत

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नजर।
1: हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरे जान संडे के संडे।
1: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वो हमसे

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोषी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

जद्दन भाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी 4 गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का, आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगतराम का है।

दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया, 1952 की शिनशिना की बुबलाबू, 1952 की छमछमा छम, शिनशिना की बुबलाबू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

57 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

अब जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। ये फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में ये एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता का, आइए सुनते हैं।

पीएल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन की चिड़िया, रिक्शावाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसिकी प्रदान की।

बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

पीएल संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी, बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को रोचक बनाता था। जैसे सरगम के गीत इसका सीधा सरल उदाहरण है। वो हम

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की ही घायल, 1952 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर हमने